0: कैसे घर लूं।
1: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक, सुर्खेत रोड, नेपालगंज। सम्पर्क 98025 32568।

0: मुनि पाइन्छ।
1: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार। मोबाइल नम्बर 98699464581।

0: व्यवस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप, वॉलेट, कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज़, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: सुना कति मड्किने छौ रे?
1: के भयो?
2: उमेर गइसक्यो, अब पहिले जाने विचार छैन?
1: माइत बसेको नबस्नु ल, पहिलो गए पनि जाउँला। तम्रुके मन त चढ्क्यो? म कन घरबारीकी चिन्ता छैन। माइत बसे पनि बस्नु ल, पहिलो गए पनि जाउँला। तमी के क्या?

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द

0: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुनु सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त, पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
3: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-389।
4: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
6: बीर डेंटल।
7: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
8: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
7: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
8: फोन नम्बर 081-532-375।
9: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करेला कहटो।
10: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
9: ए बात त ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
10: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
9: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
10: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो, कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
11: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएक लाख किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकी के विशेष अनुरोध।
12: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई, कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
11: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
12: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
11: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाइयो बढ़ाई लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरण से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
12: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
11: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके

0: आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे QR, नेपाल का अपने QR।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: ओहो, आज दाई हाँ, नहीं मजा लागा थो, मजा से दवाई करेना कहतो।
3: ये तो ओकर लाग, कांती आरोग्य अस्पताल जाई ना, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांती आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
2: ए बात तो ठीक है कहलो, साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त?
3: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाइत।
2: ए ओसिनो कला से वहां जाई मन फे ढुक्क हुना चाहल रह।
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो। कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
2: कान के समस्या बा उपचार करैला कहाँ लैजिना हो?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुनना, कान दम्मा होना, विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना, विटामिन के लाग कान में लगाइना, सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसी मशीन फे वहां मिलत।
2: ए ओसिड हो कला से बुढ़ू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही ट?
3: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-84-20-697, 98-85-23-697 वो 98-23-697।

0: पार्ने आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने डिजिटल एक्सरे सेवा
1: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासाङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081531366 र 98085549451
2: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि
4: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थकेयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श। गम्भीर मृगौला रोग, डायलेसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्तथैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बालरोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081530220 र 98146586979 081530220 र 98146586979
5: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाए ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोष और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081531000।
8: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में हो ढूसी भवा, कान खजुआव, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
8: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती।

0: रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858023697 और 9814083697
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुरखेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।
3: आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुल्यो।
4: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक मार्फत विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिँदै आइरहेको होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुल्यो। नेपालगञ्जमा विगत 23 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रवास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ। फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
3: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ।
4: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
3: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 081551462, 9858024462 र 9858206645।
5: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।
7: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
8: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
7: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
8: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बाके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
9: नींद ना आए हमको हाए, जग सोता है।
10: मानसिक समस्याबाट बस्ने उपायहरू।
11: आफ्नो बारेमा अरूसँग खुलेर कुरा गरौं।
10: स्वस्थ खानपिनका साथै राम्रोसँग सुत्ने गरौं।
11: दैनिक शारीरिक व्यायाम तथा योग ध्यान गर्ने गरौं।
10: काममा व्यस्त रहने र अनावश्यक तनाव नलिऊ।
11: असल साथीहरूसँग मात्रै संगत गरौं।
10: मादक पदार्थ र लागू औषध सेवन नगरौं।
11: नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरौं। मानसिक समस्या भएकाहरूले अन्य रोगहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचापको औषधि नियमित सेवन गर्ने गरौं।
10: स्वस्थ रहौं, अरूलाई पनि स्वस्थ रहन सल्लाह दिऊ।
12: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे में। आप लोग सुना जाते हैं अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम दुआरे।
2: हाय प्रज्ञा, सवेरे से रेडियो लिए बैठो, कहा सुना था?
3: अरे मामा, तुम नहीं जाना थो कार्यक्रम दुआरे मुहारे आओ थे।
2: ये कब और कौने दिन आओ थे प्रज्ञा?
3: सुनो बताई थे मामा, इतवार मंगल बुध के आओ थे।
2: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुनेगा ना भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम दुआरे मुहारे।
1: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
2: कार्यक्रम दुआरे मुहारे हफ्ता में 3 दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

हाँ साथी, व्यापारिक विश्राम के बाद फिर आप लोगन के स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे में। और कार्यक्रम दुआरे मुहारे में अब आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जा साथी। फोन लाइन से जुड़े के खातिर संपर्क फोन नंबर है 0815-115-122 के लाइन पे आप लोग जुड़ा जाए और जो झलक माँ गीत है वो आप लोग सुना जाए, तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोग उनका सुनावा जाए। तो हम बताए थे कि झलक माँ कौन कौन सा गीत है, गूगल बता दो खुश रहने की दवाई, और ऐसे ही हम यार हैं तुम्हारे, हम प्यार हैं तुम्हारे बोल के गीत है, और इश्क छुपता नहीं छुपाने से किसको सुनाओ दिल का हाल बोल के गीत है, और इसे ही लाल दुपट्टा उड़ गया तेरी हवा के बैरन से मैं तेरा हो गया बोल के गीत है, जिगर फिल्म से है प्यार में दिल दे दिया, जिगर फिल्म से है प्यार के कागज़ पे बोल के गीत है साथी, और इसे ही परदेसिया इतना बता बोल के गीत है, और तेरी यादों की चादर बोल के गीत है। ऐसे ही साथी आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए 0815-115-122 के लाइन पे आए के फटाफट नंबर डायल करा जाए 0815-115-122 के लाइन पे आए के जो झलक माँ गीत है कोई भी गीत आप लोग अपने पसंद के सुन सका जाते सुना जाए, अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोग उनका सुनावा जाए, जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 0097-7-81-415-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए साथी। तो खैर आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रहा जाए, आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रहा जाए, तो सुना जाए आप लोग पहले अब प्यारा सा गीत।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

साथी व्यापारी विश्राम के बाद फिर आप लोगन के स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मोहारे मा। कार्यक्रम दुआरे मोहारे मा आप लोग प्रत्यक्ष हवा से जुड़ा जाए 81-84-15-122 के लाइन पे आप लोग आवाज़ जाए साथी, फटाफट नंबर डायल करा जाए और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 00977-81-84-15-122 के लाइन पे आप लोग आवाज़ जाए। साथ ही आप लोगों का हम थोड़ा कार्यक्रम के भी जानकारी करा दी कि कौन कार्यक्रम कौन दिन आवत है और की के साथ में आवत है आप लोगों का हम बता दी। तो आप लोग अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो की शायर FM 94 MHz से छयो दिन प्रोग्राम सुना जा सका जाता है 1 बजे से 3 बजे तक

कार्यक्रम फरक फरक तरीके से है और फरक फरक नाम से है। जैसे कि आज बुधवार के दिन आप लोगों के समझ झलक वाला प्रोग्राम लेके आवा जाते, फोनिंग प्रोग्राम रहते जिमा की उमा गीत के झलकी सुनावा जाते, यानी कि झलक सुनावा जाते गीत के मुखड़ा, वही मुखड़ा सुन के ही आप लोग गाना पसंद कर सका जाते, अपने तमाम सब साथी लोगों का सुना सका जाते। और ऐसे ही मंगलवार के दिन आप लोग भावना से संबंधित गीत संगीत सुन सका जाते और इतवार के दिन भी फोनिंग प्रोग्राम रहते। इतवार के दिन फोनिंग प्रोग्राम में आप लोग अपने पसंद के जो भी गीत आप लोगों का पसंद है वो आप लोग फ़ोन करके फरमाइश करके सुन सका जाते इतवार के दिन। और सोमवार बिहार के दिन कार्यक्रम चना जोर गरम किराव मियाँ जी के साथ में सुना जा सका जाते एक बजे से तीन बजे तक। और शनिवार के दिन घर अगना प्रोग्राम संध्या शर्मा जी के साथ में और चंदा के साथ में, यानी कि हम दुई सखी शनिवार के दिन कार्यक्रम घर अगना लेके आवा जाते। उमा जो रहते कोई विषय वस्तु के टॉपिक के ऊपर बातचीत करा जाते, चर्चा करा जाते, बीच बीच में यहाँ गेस्ट भी लेके आवा जाते। तो साथी ई तो रहें कार्यक्रम के जानकारी कि ई दिन ई कार्यक्रम आवत है और की के साथ आवत है वो भी बताएं, और कार्यक्रम के नाम फरक फरक तरीके से रहते। आप लोग फोन लाइन से जुड़ के जो भी गीत आप पसंद करे चाह जाते हैं, जिसे मतलब जो झलक में है वही गीत आप पसंद कर सका जाते हैं, तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोगन का सुनाए सका जाते। तो खैर आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रहा जा साथी, और हम चलित हैं प्यारा सा गीत की तरफ।

0: हाँ हाँ साथी, कोई साथी हैं, कोई साथी आए हैं तो उनके पहले स्वागत कर लिया जाए। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, को कहाँ से?
1: सी गांव से भद्रा सिंह सिरपाली।
0: सी गांव से भद्रा सिंह सिरपाली जी। भद्रा जी,
1: हाँ जी,
0: बतावा जाए का हाल खबर है आपके?
1: बढ़िया जी, आपके कैसा हाल खबर है?
0: हमार भी हाल खबर है भद्रा जी।
1: आज कौन सा कार्यक्रम है?
0: आज झलक वाला है कार्यक्रम।
1: तो झलक तो हमने नहीं सुना है बहन जी।
0: तो ठीक है, हम सुना देते हैं आपको, बता देते हैं। ठीक है, झलक में है गूगल बता दो खुश रहने की दवाई, हम प्यार है तुम्हारे, और ऐसे ही किसको सुनाऊं दिल का हाल, और लाल दुपट्टा उड़ गया बोल के गीत है। मैं
1: लाल दुपट्टा वाला,
0: लाल दुपट्टा जी।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए फिर ये जो बजने वाला सॉन्ग है किस किस लोगों को सुनाना चाहेंगे आप?
1: ये धान बहादुर बूढ़ा मगर के
0: जी।
1: और सबसे पहले आपको तो क्या सुनाना है?
0: हाँ, हमको नहीं सुनाएंगे।
1: थोड़ा सा सुन लेना।
0: ठीक है, थोड़ा सा सुन लेंगे और क्या। थोड़ा सा ही सही है और क्या। और फिर और किसको सुनाएंगे?
1: और पूरा श्रीगांवासी को।
0: ठीक है, पूरे सी गांव वासी को सुनाएंगे आप, है ना, आपके नाम से पहचाने वाले सभी लोगों को सुनाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचेगा तो मुझे सुनाएंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी। आपकी
0: साथी रहे जो है भद्रा सिंह सिरपाली जी, फोन करना सी गांव से, बातचीत होते ही हो तो टेलीफोन लाइन बिछे देगा, शायद हो सकता है उनके नेटवर्क साथ, मतलब बैलेंस साथ न दी, सो ये भी हो सकता है, या फिर नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं है, फिल्म के नाम और गीत के बोल तो बता चुके रहे हैं, और जो है कीका सुनावे चाह जाते उन लोगों के भी नाम ले चुके रहे। खैर अब हम चलित हैं व्यापारिक विश्राम के तरफ, और व्यापारिक विश्राम के बाद आप लोग भद्रा सरपाली जी के पसंद माँ गीत सुना जा सका जाते हैं, लाल दुपट्टा उड़ गया बोल के गीत। तो अब चला जाते हैं व्यापारी विश्राम की तरफ।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Patagonia. Extreme energy drink.
1: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
2: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
1: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
2: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध होए। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दै छ, थायराइड को समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
4: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
3: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोन को समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
4: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
3: कस्तो खबर?
4: अब प्रत्येक दिन सुगर, थायराइड तथा हार्मोन रोग का विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इंटरनल मेडिसिन TU, एंडोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
3: ए, साँच्चै?
4: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
3: ए, त्यो त झन् राम्रो
4: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी MBBS, MD KU, IVF स्पेशलिस्ट इंडिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कंसल्टेंट जनरल तथा लेप्रोस्कोपिक सर्जन बाट सेवा पाइन्छ।
3: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
4: अझै अरु सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
3: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
4: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आज गइहाल उपचार गर्न।
3: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर BP चोक नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
4: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
5: भर्ना खुल्यो। युथ भिजन इंग्लिस मिडियम स्कुलमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: स्मार्ट बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, गुरुकुल सम्बन्धीको समेत अध्ययन हुने, सबै कक्षामा विषयगत शिक्षक भएको र अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिइने, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा अभ्यास। युथ भिजन इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल, नेपालगञ्ज 4, प्रगति टोल, बाँके।
6: प्रधान अध्यापक भूपाल गिरी, सम्पर्क नम्बर 98580।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
1: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
1: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेरे के उपचार भी उपलब्ध है।
0: अस है तो अम्मा कहीं आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
1: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफॉर्मेंस र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्विस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
1: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
4: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
1: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
4: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू, हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू,
4: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्ने अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी यौन टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
7: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हो एक समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10 बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
9: नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुरमा रहेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीले नेपालगञ्जको शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउँदै आएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न गरिएको निरन्तर प्रयासकै परिणाम स्वरूप विद्यालयले स्थापना कालदेखि नै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न संरचना र आवश्यकताका सबै कुराहरू सहज उपलब्ध हुने भएकोले विद्यार्थीहरूको पनि पहिलो रोजाई बनेको छ। विद्यालयले शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउँदै आएको छ। 25 वर्षको सफल यात्रासँगै युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमी भविष्यमा अझ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित अघि बढिरहेको छ। तपाईँका बालबालिकाहरूको लागि उत्कृष्ट विद्यालय खोज्दै हुनुहुन्छ भने शैक्षिक सत्र 2083का लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलिसकेको छ। सिट सीमित छन्। आजै निवेदन दिनुहोस्। शिक्षा, संस्कार र सफलताको पर्याय युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमी, नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँके। प्रधानाध्यापक जीवराज भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 98582318।

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
1: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

हाँ तो साथी अब हम कार्यक्रम के भी बिल्कुल अंत में पहुँच चुके हैं। तो ये कार्यक्रम का सुन के साथ दे खातिर और कार्यक्रम में फ़ोन करे वाले साथ में फ़ोन ट्राई करे वाले भी साथी लोगन का तहे दिल से धन्यवाद है। तो साथी अब इतवार के दिन कार्यक्रम दुआरे मुहारे ले के फिर मिले वादा करते यही अंतिम गीत के साथ हम चंदा का दिया जा विदा। नमस्कार।

0: नेपाल का अपने QR
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: सुन्नु न सावित्रीजी, मलाई सोफा, दराज, डाइनिङ लगायत अफिसको सामान किन्न जानुपर्ने थियो, कहाँ जाने होला?
7: ए हो र, यसको लागि तपाईँले चिन्ता लिनै पर्दैन। यदि तपाईँ नेपालगञ्जमा आफ्नो घर, अफिस वा पसलका लागि गुणस्तरीय फर्निचर खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सही गन्तव्य हो अर्बन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ हब प्राइभेट लिमिटेड, जुन नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा रहेको छ।
6: ए हो र, त्यहाँ अर्डर अनुसार मैले भनेका सबै कुरा पाउँछ त?
7: पाउँछ नि, किन नपाउनु? त्यहाँ अर्डर अनुसार बेड, सोफा, डाइनिङ टेबल, अफिस टेबल, ड्रेसिङ टेबल, दराज लगायत सम्पूर्ण फर्निचर उपलब्ध छ। टिकाउ सामग्री, आकर्षक डिजाइन र उत्कृष्ट फिनिसिङका साथ उत्पादन गरिन्छ। एक पटक अवश्य भेट्नुहोस्, तपाईँ निराश हुनुहुने छैन। हजुर, अर्बन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ हब प्राइभेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 98-448-5535 र 98-082-54-037।
8: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
9: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार करके कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए, करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सरसलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए, करावा जाए।
8: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए, करावा जाए।
9: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
10: बच्चा को भविष्य पढ़ाईले मात्र होइन, सही वातावरण, सही मार्गदर्शन र सही निर्णयले बनाउँछ। 600 बढी अभिभावकको रोजाई हो बाँकेको खजुरा 4 अवस्थित अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल। 2053 सालदेखि निरन्तर गुणस्तरीय शिक्षामा समर्पित, नर्सरीदेखि कक्षा 12 सञ्चालन भइरहेको यस विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षा, संस्कार र नैतिकतामा आधारित सिकाइ, खेलकुद र अनुशासनमा विशेष जोड, कम्प्युटर, संगीत, खेलकुद, मार्शल आर्ट, चित्रकला, योगा र उद्घोषण तालिम लगायतका तालिमहरू विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसार सञ्चालन गरिन्छ। साथै बालमैत्री वातावरण र हरियाली बगैंचा भएको सुरक्षित परिसर सीसीटीभी जडान भएको फराकिलो खेल मैदान र पार्किङको सुविधा भएको छात्राका लागि छुट्टै शौचालय शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था र स्कुल बसको पनि सुविधा छ। तपाईको छोराछोरीको उज्यालो भविष्यका लागि सही छनौट आजै गर्नुहोस्। भर्ना खुला छ, सीमित सिट भएकाले आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 98582019।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में हो ढूसी भवा, कान खजुआव, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में हो छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथ ही कान कम सुने वाले बीरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9814483697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: Back to back. In this song on Stay

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि।
5: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डालें, नाए ठीक आते हैं।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीना है, महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीनावारी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: अपने QR, नेपाल का अपने QR।
1: यो कृष्ण सार FM
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्ति के तेज़।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस.

0: money, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीड़ा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
4: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी